0: extreme energy drink.
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।
2: हाय मेरे भाई, अंतिम समय यो फसल से इंसान देखें थे, मुझे आज तो नाम रिचा लेके देखें थे नहीं, क्यों ना उस तक आका, ये फसल को तो रेडियो धादिंग का तो बिक्री अपन बजी रहन चाहे, तो इसमें भाई बहुत नहीं ले गए और रेडियो धादिंग में बिक्री अपन दिया रही है उसे।
3: हजुर, तपाईं पनि आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाउन चाहनुहुन्छ भने अहिलेै रेडियो धादिङमा विज्ञापन दिइहाल्नुस्। यसले तपाईंको व्यापार मात्र होइन तपाईंको परिचय पनि दिनेछ।
1: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

बिहारी बाना कालो के सेमा तीन घर रामरी कोई चीन के सेमा ओए रत्ते घारी बाना कालो के सेमा तीन घर रामरी कोई चीन के सेमा किंचन मी को गला पुट का

0: कहाँ रंगीन तथा सादा जस्ता पाता रड सीमेंट जीआई सीपीआर पाइप तथा पेंटिंग का सामग्री पाइन का साथ ही घर निर्माण का लगी आवश्यक संपूर्ण सामग्री सुपथ मूल्य में पाइन
1: संपर्क श्रीकृष्ण सप्लाई प्रसार बजार पशुपति मार्ग धादिंग नवीन कुमार श्रेष्ठ
0: फोन नंबर 0105363 मोबाइल नंबर 9841 36 83
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: रूप को हूँ और वो माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस की अभिकर्ता बनू।
1: देव माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: आदिमवासीको लागि खुशीको खबर। टीबीएस बाइक एक्सचेंज तथा खरीद को महाकुंभ मेला आउँदैछ। गजरी बजार मासो पुस्ले बैंक अगाडि महाकुंभ मेला 2083 साल जेठ 24 गते देखि 30 गते सम्म। तपाईसँग जुनसुकी कंपनी को मोटरसाइकल वा स्कूटर छ, अब सजिलै टीबीएस सँग साट्नुहोस्। आकर्षक फाइनेंस को सुविधा, नया बाइक खरीद में विशेष कैश डिस्काउंट, मन परेको बाइक को निःशुल्क टेस्ट ड्राइव पनि। आउनुहोस् साथमा नागरिकता र लाइसेन्स लिएर। थप जानकारी को लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सुन्दर विश्वराल, मोबाइल नम्बर 9848-5620-88। विश्वराल मोटरसाइकल एन्ड अटो वर्कसप, गजरी गाउँपालिका 1, गजरी बजार, धादिङ। टीबीएस बाइक एक्सचेंज तथा खरीद को महाकुंभ मेला अवसर नछुटाउनुहोस्। मेला अवधि में गजरी पुग्नुहोस्। विश्वराल मोटरसाइकल एंड अटो वर्कसप, गजरी गाउँपालिका 1, गजरी बजार, धादिङ। संपर्क मोबाइल नंबर 9848-5620-88।
1: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज, रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: एनिमाइलाइज लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियों शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिङ बेसीमा हरेक महिनाको पहिलो शनिबार मानसिक रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण।
1: यदि तपाईँ वा परिवारका कुनै सदस्यमा

0: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
1: उच्च गति, भरपर्दो कनेक्टिविटी र बलियो नेटवर्क द्वारा संचालित सीमलेस ब्राउजिंग र स्ट्रीमिंग का लागि डिश होम इंटरनेट अत्याधुनिक प्रविधि को नेपालमा पहिलो पटक वर्ल्ड क्लास इंटरटेनमेंट को
2: रेडियो धारी समय संकेत
3: अहिले बेलुकीको 8 बज्यो।